0: нан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш
1: तरफ़ें जैसे झड़पें शुरू हो गई और फिर इसराइली फौज ने काबजीन का तहफ़ करने के लिए इलाके में दाखिल होकर कार्रवाई की. किसी जख्मी या गिरफ्तारी की कोई इत्तला नहीं मिली. दूसरे हमले में रामल्ला के मशरक़ में वाक़